तो सब कुन में आप को पर कुन में ना कोई तार त्राजू तो लिए निवे सगोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा है शीश

संध्या वादंग स्लपो जिस बगल समादंग मुख झूठ विभूषण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक ललाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सा फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो तिहावे विण सत गुर बाट न पावे पौड़ी।

0: पौड़िया पे ही करना क्यों कला पे ही तारी है, देखे कि तय अपना धर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई बारी है, जिसके जी प्राण है कि साहेब मनो विसारी है, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है।
1: आसा महला चौथा जिन पिटिया में

चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुर

मोहनी महाबचित्र चंचल अनेक भाव दिखावे होए ठीठ मीठी मन लागे नाम लैण नावे ग्रह बनहे तीर बरत पूजा बाट काट जोहनी नानक पयम पैदया तारहो मैं नाम अंधले टोहनी मोहे अनाथ प्रनाथ ज्यों जा नहो त्यों रखो चतुराई मोहे नाहे रिजावो कह मुख हो नह चतुर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप तूप नानन बंक जह पावे तह रख तुही जय जय जय अम्प सगल जाको करुणा पत गत किन्ह लखो नानक पाय अम्प सेव सेवक ज्यो जान हो त्यों मोहे रखो मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सर मोहे चात्रिक तुम बूंद तृप्त मुख पर मुख पर हर प्यास मेरी जी अहिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाई सब महल

मिले स्वामी अपरंपरा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा, संत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सखी आओ सखी, वस आओ सखी, असी पिरका मंगल गावह। तजमान सखी तजमान सखी, मत आपने प्रीतम भावह।

पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया।

आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले किते छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग निकल जपन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला।

सब किस्ते रे बस तेरा घर बला तेरे हरि आनंद बधाई तुझ घर मान मता तेजी अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दा।

दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होय। तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना होय। बलहारी कुदरत वसे।

जियो परिया। शैल पत्थर मह जंत उपाई, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूकी कास्त हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भउ करिया। ऊडे ऊडे आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरी शरिया। तिन कवन खलावै, कवन चुगावै, मन मह सिम।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुने चुने शत्रु हमारी मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ली हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाय ब्रह्मा बप तरा, काल पाय शिव जू अवतरा। काल पाय कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बीद पीद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहा।

तिन के तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा,

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर

दान तेरे घट चानना, तन चंद दी पाया, चंदो दी पाया दान हर कै, दुख अंधेरा उठ गया, गुण जान लाड़े नाल सो है।

हर प्रभ काज रचाया गुरमुख वियाहण आया, वियाहण आया गुरमुख हर पाया, सा धन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाई, हर जियो आप सवारी। सोर नार गान गंधर्व मिल आई, अपूरब जन्य बनाई। नानक प्रभ पाया मैं साचा,

चरण कमल जाका मन रापे। सोग अगन तेस जान न व्यापे। सागर तरे आ साधु संगे। निरपौ नाम जपहो हर रंगे। पर तन दोख किश पाप न फेड़े। जम जंदार न आवे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। नानक उधरे प्रभ शरणाई। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। नानक उधरे प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार मस्तक रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया। जगदीश सर्व रखिया गुरु दयाल है पै दुख विनाशन है। भगत वशल अनाथ नाथे। सर नानक पुरख उचुत है। बिलावल महला पंजवाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा खेटे जिन गंत बनाई। राम नाम औखद दिया एकाल लाई रहाओ। राख लिए तुम रखनहार सा ब्याज मिटाई। कहो नान कृपा पई प्रभु ते सहाई। सोहला रा गौड़ी दीपकी महला पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जय कर कीर्ता खिया करते का होए विचारो। तित कर गावो सोहेला सिवर हो सृजन हारो। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहेला हो। मारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जिहड़े संभाली ने देखा गा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै सदा ते कवन समार। संबुत सहा लिखिया मिल कर पावो तेल। देहो सजन असी सड़िया जो होवे सैब स्यो मेल। कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवन। सदन हर सिमरिय नानक से देवन। रागासा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको बेस अनेक। बाबा जयकर करके कीर्त होए। सो कर राख बड़ाई तोय रहाओ। विश्वे चस्या घड़िया पहरा तिती वारी माहो हुआ। सूरज को रुत अनेक नान करते के तेस। राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। तूप माले आन लो पवन चवरू करे। सागल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए। पवखन्ना तेरी आरती अहता शौदवा जंत तेरी रहाओ।
सहस्ताव नैन नान नैन है तोहि को सहस मूर्त ननायक तोहि सहस पाद जिमिल नानक पाद गांधवेन सहस्ताव गांधव चलत मोहि सामै ज्योत ज्योत है सोए इसद चानण सामै चानण होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभाव है सो आरती होए हर चरण काबल मकरंद लोभ मनो आनंद न मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग हो जाते तेरा नाए बासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन बड़ा है कर डंडौत पुन बड़ा है रहाओ साकत हर रस साधना जाने अनंतर हो मैं कंडा है ज्यों ज्यों चले चुका दुख भाव है जिम काल सहै सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पखंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोखंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है जन नानक नाम उधार टेक है प्रणामे ही सुख मुंडा है रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लागे बसन सहेला औद कट दिन सरैना रे मान गुर मिल का सवारे रहाओ यो संसार विकार संसेम है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह रस अकथ कथा तन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुर के मने बसेरा निज कर महल पाओ

मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

ऋण ना वे किछ थाय न पाई, रह बे बाणी मड़ी मसानी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेट सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नान

तित नाम लाग ते तीस ते आवे जतीत पीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पतामे चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गरु मत सतकर संगत उद्दरिया सोई नाम अचल भगते पवता।

0: तिनर दुख न भुख ते नर निधन न कहिए ते नर शोक न हुए ते नर से अंत न लइए ते नर सेव न करे ते नर सह सहस समपे ते नर दुलिच वह ते नर उथप बिथप सुख लहे ते नर संसार में अपै पट रिप मद ते सक्यत ते नर जल पन गुरु अमरदास सो प्रसन्न जे हे।
1: तै पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछाणियो नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जानियो सुपन इक प्रतख इक इक समें लीनो तीस इक अर पंज सिद्ध पैंतीस न खीनो इको जे लाख लखो अलख है इक इक कर वरनियो गुरु अमरदास जालपण तू इक लोड़ है इक मनियो।
2: जे मत कही जय देव जे मत ना मैं सम्माणी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोबिंद गत पाई तैं लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्स पावो मुकत।
3: गुर अमरदास परसिए पोहम पातक बेनास है गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसास है गुर अमरदास परसिए ध्यान लहे पहो मुके है गुर अमरदास परसिए अपहो लबे गौ चुके है एक बिन दोगन जो तो रहे जास मंत्र मान में लहे जाल पाप दारथ इतड़ है गुर अमरदास।

पर कह भी ना सकूं। सर्व चिंत तुझ पासे साध संगत हो तकों, तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा, अगम अलख कारण पुरख जो

दास राखु सरनाई। सो कहो टल गुर सेविय एहनस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है सब नांदा विसाहु। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है सब नांदा विसाहु।

साहिब जी तनासरी महला पांजवा जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन निःचल राज कमाओ जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन निःचल राज कमाओ।

रहाओ। प्रागट कीने प्रव करने हारे, नासन भाजन थाके। घर मंगल वाजह नित वाजे, अपने खसम निवाजे। आस थिर रहो डोलो मत कबहू,

कमल मुख उजल दरबार, जिनके जी तिनही फेरे आपे पया सहाई। अचरज किया करण हार, नानक सच वडियाई। जिनके जी तिनही फेरे आपे भया सहाई। अचरज किया करण हार, नानक सच वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, निःचल राज